ॐ जन स्वाहा ॐ तप स्वाहा ॐ सत्यं स्वाहा ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।

0: मंगलायतनो हरि। एक बार ब्लू श्री शिव शंकर भगवान की जय। वी वुड आस्क दोज ऑफ यू हु आर डिजायरस ऑफ डूइंग आरती टू कम अप एंड परफॉर्म आरती। दोज हु हैव योर मालास, योर प्रसाद, दोज हु हैव योर ऑफरिंग्स ऑफ घी एंड सो ऑन, वी इनवाइट यू टू कम अप ऑन स्टेज एंड डू आरती।
1: जय।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: द एनर्जी द पर्सनालिटी The music. Spend your time with the Maverick right here on your number one station, Radio Jagriti 102.7 FM for Dil Dhadak Ne Do. Enjoy the best music of different parts of India and right here in the Caribbean. Enjoy the latest budget.

की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम रिपोर्ट इज अगेन टू ऑल ऑफ यू। जय सीताराम। वेलकम वंस मोर टू व्हाट इज एन आई सत्संग, व्हाट इज एन आई व्रत, वन ब्रोकन वो टू भगवान श्री राम। This Thursday is one more flower, Arunchudi Mala, to Bhagavan Shri Ram. When we close our eyes, sorry, last time in this world, our eyes, see Bhagavan in front of us, we'll offer that mala to him. And those whose lives are so pious and so holy, only they are truly, truly, truly, truly happy in this world. Shri Ram, Jai Ram.

सरस्वती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जही जही वेश अजादी स्वर तही तही तन अनुरूप दे ऑल हैड देयर ओन कलर स्कीम्स डिफरेंट ऑर्नामेंट्स हस्बैंड वाइफ ऑलमोस्ट द सेम शी सॉ हरसेल्फ आल्सो कॉन्शियस फ्रॉम हरसेल्फ शी बिकेम वेरी एम्बैरस्ड शी टोल्ड भगवान शी वाज अ ह्यूमन बीइंग And the katha continues now for today. She saw this point I love very much. All the holy men, hands like this, waiting for Bhagavan Shri Ram to look at them, waiting for their turn to the offerings. Katha said they all waited on their turn to approach Bhagavan Shri Ram. Simple point, important point. Which of the turn to Bhagavan Shri Ram. Not pushing, talking, give me first. And so they came to Bhagavan Shri Ram, Namami, Namami, they bow to Bhagavan Shri Ram. Dekhi, Jaha, Taha, Raghupati, Jethe.

उमापति महादेव की जय हो। भगवान हे ये पड़े ऑल ओवर ऑल प्लीज स्टैंड एवरीबॉडी उठो सबको प्लीज स्टैंड पे फे फे बनाना आरती एंड बिफोर यू आरती आई रिमाइंड यू वन थिंग पितर पक्ष इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ पितर पक्ष यू सी दी पिक्चर ऑफ माय फादर्स नानी माय फादर्स फादर माय आचा ये ब्लॉक नेम सुना माय फादर आचा माय फादर फादर माय आचा My mother and father, my father's guru Ramchandra Baba, and my Guruji. This is my master, my Bhagavan Shri Ram, Jai Shri Ram. So when you do arti, pray for your ancestors as well, everybody. Prahlad Bhaiji, Pralankaro.

0: जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: रियली
0: राइट राइट

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves।
2: Oh, cute.
0: Right, मैं

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh, yeah!

0: अरे तू बाहर क्यों बैठा है? अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाड़कर चौल में, 1 घंटा दूर।
0: बिरवाड़कर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार करी होगी, जा।
2: अरे बबलू देख तेरे से कोई मिलने आया है।
3: ये बबलू है?
2: हाँ वही बबलू है।
3: अच्छा तो बबलू है।
1: आप कौन?
3: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।

श्री जग जननी दुर्गा माता की जय। माय डियर फ्रेंड्स, जय सीताराम। टुनाइट वंस अगेन वी से वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हियर एंड द डिवोटीज हु आर लिसनिंग एंड व्यूइंग ऑन टीवी एंड रेडियो जागृति एज वेल। जय सीताराम। Puja has been completed. Offerings have been made to all of the devis and devatas. And now we are preparing ourselves for aarti. Please stand as we clasp our hands, as we meditate upon that divine form of Sri Ganesh Ji, Sri Mata Saraswati, as we pay respect to our dear Guru.

की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरु के दंडवत सकल पंच के जय जय सीताराम। बैठ जाए, हैव योर सीट्स प्लीज।